0: मैंने कभी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस दफा बदकिस्मती से किसी जानिब से ये सवाल उठाया गया था कुछ दोस्तों की जानिब से जी, कि उसने किया क्या है, उसको इतने साल हो गए, 4 मरतबा कामयाब हो चुका है कमून के इलेक्शन में, मेरे मुतालिक ये जो कहा गया था कि उसने किया क्या है। तो आपने भी मुझे कहा जी कि मैं इन चीजों को बताऊं, हाईलाइट करूं, तो मैंने कुछ कम ही चीजें बताई थी। मेरे पास राय साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और मैं ये भी जुर्रत के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने ये भी कहा था कि डेनमार्क में कोई भी शख्स जिसने कोई को खड़ा होकर मेरा गिरेबान पकड़ सकता है, अगर किसी बंदे ने मुझे कोई काम कहा हो और मैंने उसके साथ में चला ना हूं, उसका काम हुआ है या नहीं हुआ, वो मेरे इख्तियार में था या नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूँ कि कोई बंदा आए और मेरे सामने खड़ा होकर कहे कि मैंने इसको ये काम कहा था और इसने मेरे साथ तआमुन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर शख्स के साथ तआमुन किया जिसने मुझसे, और लेकिन ये मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं लोगों को बताता फिरूं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने फलां बंदे की ये मदद की, फलां बंदे की ये मदद की। तो चंद ऐसी चीजें पर्सनल लोगों के जो मामलात मैंने हल किए हैं या जिनकी मैंने मदद करने की कोशिश की है, उससे हटकर मैंने सिर्फ वो जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें थी उनमें से भी मैंने आधी चीजें जो वो बयान की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फख्र है इस बात पर कि कम्युनिटी ने जो मुझ पर एतमाद का इजहार किया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका हक अदा करने की कोशिश की है, और मेरे क्रेडिट पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। कोई माने या ना माने, मुझे किसी की एक्नॉलेजमेंट चाहिए नहीं, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे कोई शील्ड नहीं चाहिए, एजाजिया नहीं चाहिए, मुझे किसी की जानिब से एजाज नहीं चाहिए, बस मेरे लिए मेरा जमीर मुतमइन है कि जिस बंदे ने मुझसे किसी काम के लिए मुआवनत के लिए कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके लिए कोशिश जरूर की है। अब मसला जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बंदा अगर किसी जगह पर जाता नहीं है, मिसाल के तौर पे हमारे कितने लोग हैं, जो मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ कि हमारे कमून की हर महीने में एक ऑफिशियल मीटिंग ऐसी होती है जिसमें हर बंदे को आने की इजाजत होती है, जो हमारा ओपन ताउस ऑर्डन होता है उस तक वो बैठ सकते हैं, वो 1 घंटा उसमें लगे, 2 घंटे लगे, बल्कि वो तो हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं मून से। तो अगर किसी बंदे ने वहां पर आकर मेरा प्रोग्राम, वहां पर हमारी जो मीटिंग्स हैं उसमें किसी ने आके देखा ही नहीं है कि वहां पर क्या होता है, तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कहीं बैठकर, तो बंद कमरे में बैठकर या कहीं और बैठकर वो ये कहता है फिर जी के कमून में होता कुछ नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स जिसने आपका प्रोग्राम नहीं देखा, जो प्रोग्राम आप हर साल करवाते हैं, तो उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बाहर बैठ कर कहे जी किस बंदे ने किया कुछ नहीं है या राजा साहब ने कुछ नहीं किया। तो मैं समझता हूँ ये बदयंती होती है कि आप यकीनन जिस बंदे ने कोई अच्छा काम किया है उसका इजहार करना चाहिए और उसको एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए और उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो अगली दफा उससे बढ़कर, अगर मैं उसमें कोई तआमुन नहीं कर सकता तो मुझे उसकी सिर्फ तनकीद करने का, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब और गैर जमहूरी रवैया है, और ये इंसान की ज़हनियत का आकाश होता है कि इंसान अपनी जानिब से उसका सोच का लेवल क्या है, ये जाहिर करता है जब इंसान किसी पर बिला वजह तनकीद करता है या उसे हदफ़े तनकीद बनाता।
1: शाह साहब, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म होगी, स्कूल भी शुरू हो गए, नई क्लासें भी आ गई, और कॉलेज भी जो है, बच्चे बच्चियां जो है उन्होंने कॉलेज को भी, जिमनेजियम को भी जो है वो ज्वाइन कर लिया, मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे गई, कॉलेज पे गई, तो शाह साहब ये चीज़ें आप देखते रहते हैं, चूँकि आप बच्चे खुद पढ़े लिखे हैं, आप सारे प्रोसेस से ये सारी चीज़ों से गुजरे हुए हैं या गुजर भी रहे होंगे, तो शाह साहब आप इनके बारे में हमारे मुस्तकबिल, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, और हमने देखा कि हम ज़्यादा अब सोशल मीडिया को और बहुत ज़्यादा हम कहीं सियासत में तब्दील हो जाते हैं, तो शाह साहब हमारा अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, आने वाला जो वक्त है वो कैसा होगा?
0: अरे सर, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको देखकर बहुत खुशी होती है कि आला तालीम याफ्ता हमारे बच्चे हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको हमारे बच्चे आला उदों पर फाइज नजर आते हैं। आप अस्पताल में चले जाएं, आप किसी और जगह चले जाएं, आप जितने ऑफिसेज हैं उनमें चले जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप स्कूल में चले जाएं, टीचर हमारे बच्चे हैं, लेबोगंट हमारे बच्चे हैं, स्वीप्लास के हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर्स हमारे बच्चे हैं, वकील हमारे बच्चे हैं। लेकिन एक जानब जहां पर हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में एक बदकिस्मती से जो हालात बन रहे हैं, उसमें जो अदम बर

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 1:35 ہوا چاہتے ہیں، 16/8/2026 کا پروگرام ہے۔ سامعین، موسم کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ تو ہو چکی، اسی طرح بادل بھی آ گئے، وہ بھی ہو چکی۔ اب چونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی موسم یا سیاسی بادل ہیں، یہ جو کافی لمبے عرصے سے چل رہے تھے، 14 اگست کے حوالے سے بھی، اسے سیاست کے حوالے سے، 14 اگست کا 14 اگست ہی ہوتا ہے، مینگو فیسٹیول ہی ہوتی ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں وہ بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہیں، کمیونٹی کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی ہوتی ہیں۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے تجزیہ نگار عدنان امین علی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کوئی بریکنگ نیوز بھی لیں گے۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے عدنان، میں نے چھوٹی سی تمید جو ہے وہ جلدی میں باندھ دیا، اور جس طرح موسم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہوتا ہے اور ہماری کمیونٹی کی سیاست بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے، جس طرح 2 دن آم ہوتے ہیں، تیسرے دن آم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے، تازہ نہیں رہتا، اسی طرح سیاست بھی جو ہے وہ 2 دن گزر جائیں تو وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟
1: صاحب ایسے ہی ہے، دیکھیں جیسے آپ بھی منڈے والے دن کہہ لیں، آلموسٹ ساری وہ موسم کافی ٹھنڈا اور بارش کا ہوتا ہے، اور پھر گرمی بھی آتی ہے ابھی اس موسم میں، کیونکہ اب موسم تو چینج ہی ہو گیا نا، تو ستمبر بھی آ رہا ہے تو 10 دسمبر کا پیریڈ تو ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ کو معلوم ہے پچھلے منڈے والے دن ساری آلموسٹ ویکیشن ختم ہو گئی تھی، اسکول شروع ہو گئے، ڈونیشن شروع ہو گئے، آلموسٹ لوگوں کے 90% کام شروع ہو گئے، تو ایک قسم کا کہتے ہیں نارمل ویریئر سسٹم شروع ہو گیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کمون کا کمون کے بجٹ آئیں گے، سینس بجٹ آئیں گے، مطلب کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو رولنگ سسٹم ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب چلتا رہے گا، اور آہستہ آہستہ کیا کہتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، اور نارمل ڈینس وہ کیا کہتے ہیں ہوتے جائیں گے۔
0: یہ عدنان آپ نے بجا فرمایا۔ عدنان، یہ جو سارا سسٹم اب شروع ہوگا، جو پارٹیوں نے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں، کیا وہ اس پر عمل درآمد ہوگا یا کہ بس الیکشن ختم ہو گئے تو بات بھی ختم ہوگی؟
1: یہ سب کوشش تو کریں گے نا کہ جو پالیسی جو ویکینسی بنے اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی کیا کہتے ہیں جو ان نے وعدے کیے ہیں ان پہ کوشش کریں گے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں پورا کریں گے تو آبویسلی پھر لوگوں میں کیا کہتے ہیں فرسٹریشن آ جاتی ہے، اور پھر لوگ ان باتوں پہ کرتے ہیں، اور پورے ستمبر کے اندر اس بات پہ والر بھی اٹھے ہیں کہ یہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں 1-2 پارٹیوں نے پھر کیا کہتے ہیں پورا جو سسٹم ہے، جو پورا ایریا ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے کچھ دنوں کے بعد اس سال کا نیشنل بجٹ بھی آ جائے گا، لوکل کمیونوں کے بھی بجٹ آ جائیں گے، تو پھر آپ سے پتہ چلے گا کہ کہاں سے پریپریٹری ہوتی ہے، کہاں سے نہیں ہوتی، اور پھر کہاں سے چیزیں چلتی ہیں، اور آپ سری کیا کہتے ہیں لوگوں کی سوال جو ہیں وہ بھی شان کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کافی ٹھپ چیزیں رہی ہیں اور کافی مشکلات بھی ہیں، اور ہر چیز پہ کیا کہتے ہیں غور کریں گے، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور آبویسلی اس کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔
0: عدنان، الیکشن تو پارلیمنٹ کے کسی ٹائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کمیون کے الیکشن تو ان کے ڈیٹ، مہینہ اور سال جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی دن ہی ہونا ان کے ہوتا ہے، ریجن کا بھی، تو اگلی دفعہ آپ محسوس کرتے ہیں نئے لوگ آئیں گے یا یہی لوگ جس طرح چل رہے ہیں اسی طرح آگے کنٹینیو کریں گے؟
1: صاحب میرے ہاتھ سے تبدیلی کافی آئے گی، اور کیونکہ لوگوں کو مسائلوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اب اس طرح ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ آپ جب الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو اس کمون کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے، جس طرح ہر کمون کا ایک ایریا ہوتا ہے، آپ بہت سارے وعدے بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، مگر آپ کو یہ بھی اندازہ رکھنا چاہیے کہ آپ جب وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہو سکتے ہیں کہ نہیں، क्योंकि हो सकता है कि हर चीज ना तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर वादा और हर चीज पूरे करने के लिए पैसे भी साथ होने चाहिए। और जैसे आपको मालूम है इस वक्त ये एक डिबेट जारी है कि लोगों को पता होना चाहिए। आप इस वक्त देखें नेशनल प्लान था, आप एक चीज देखें ना जो एक शॉकिंग न्यूज है वो ये है कि टेंस फॉल के पक्षी वंस अगेन जाग गई है और वो एक एजेंडा पे जागी हुई है कि उनका जो नीम क्या कहते हैं एजेंडा है कि मुसलमान काम करेंगे। और इस वक्त वो एक किस्म का देखा जाए ना तो बहुत आगे जा रहे हैं। अभी तो बंदा कह सकते कि इलेक्शन का टाइम है, पता नहीं मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो इलेक्शन नहीं आएंगे, मगर वो वंस अगेन क्या कहते हैं जाग गए हैं। अब ये देखें हमारे मसाई जो स्वीडन है उधर जो उनकी उस तरह की पार्टी है टेनमस का मुकाट उसी तरह इनकी टेनमस में है, वो इस वक्त पहली दफा जो बंदा 20 साल मेजर नहीं था आज तक का स्वीडन के अंदर होगा वो टेक्निकली जाके शायद गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। तो अब एक किस्म का देखें ना कि कौन कौन सी तब्दीलियां आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं जिसपे गौर करने की जरूरत है। कमिंग डेज में यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा डेमोस्ट्रेशन आ रहा है 5 को, पता नहीं अब करते हैं कि नहीं करते, कुछ दिन के मसाइल हो गए थे मगर अभी तक तो प्रिपेयर है। तो इसलिए हर चीज को उसे देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी को आप कैसे चेंज करेंगे। तो अब सर ये हो सकता है कि 2029 के जो कानून के इलेक्शन आए उसमें काफी नए लोग आए और काफी लोगों को देखने की जरूरत है और पढ़ने को गौर से ये करना चाहिए कि आप जिस कमून में रह रहे हैं 98 कमूने हैं और 4 रीजन है जहाँ के इलेक्शन होंगे अगली बार, तो बंदे को देखना चाहिए कि बंदा उस तरह का टाइम और उस तरह का क्या कहते हैं दे सकता है और चीजों के मामले में पता भी होना चाहिए। आपको जैसे मालूम होगा इस समर के अंदर काफी हालात भी हुए हैं खराब, कुछ कमूनों में टास्टोप होगी, एमसोन होगी, रॉस्किल होगी, टिंगप्या होगी, और उन चीजों पर भी हमें गौर देना चाहिए कि वो चीजें क्यों हो रही हैं और उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं।
0: अदनान, अब ये जो है वो आम का जो मेला है मैंगो फेस्टिवल, वो भी एक रौनक जो है वो अब लगता नहीं है कोई और प्रोग्राम होगा, वो तो सारे ख़त्म हो गए। 14 अगस्त के हवाले से भी कोई 7-8-9 प्रोग्राम हुए, वो भी अख्तितम को पहुंच गए और अच्छा अख्तितम हुआ जिसे कहते हैं, खुशी वाला अख्तितम था, तादाद थी लोगों की, ये काम भी ख़त्म हो गया। और अभी जो क्या एमना बनता है, किस तरफ हमारी कम्युनिटी जाती है, किस सोच को लेकर आगे जाती है, क्या उन्होंने पाकिस्तानी सियासत करनी है या डैनिश सियासत करनी है, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं?
1: सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं यही कहूंगा कि ये सब कुछ के बारे में अब ये सोचना चाहिए कि इस वक्त बात होती है मुसलमानों को टारगेट आने में भी और हम लोग खुद भी क्या कहते हैं ना एक किस्म का क्या कहते हैं ना चैलेंज दे देते हैं और दे देते हैं। इस वक्त हमें ये भी फोकस देना चाहिए कि हम इस कल्चर का एक हिस्सा बन गए हैं, हम इस डिबेट को कैसे चेंज करेंगे। हम कोशिश तो करते हैं मगर फिर कुछ है ना कुछ हमारे लोग जो जिस बात को जरा थोड़ा उल्ट ले जाते हैं। जैसे ये अब कॉलेज शुरू जमेशन शुरू होने लगे थे और कॉलेज शुरू होने लगे थे उसके अंदर हिजब तरीक ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसके बारे में बहुत सारे सल्चर चल गई थी, मगर मसला ये है कि बंदा उस चीज को चेंज भी कर सकता है क्योंकि उसको बंदा टेक्निकली कुछ बंदों ने उसको और चीजों में कह के ना उस बात को खत्म करने की कोशिश की थी पर अनफॉर्चुनेटली उसमें ना एक दो मिस्टर थे जिन्होंने उस बात को बहुत बड़ा कर दिया था जितनी बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि हम सारे मुसलमान हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिस तरह हम मैंगो फेस्टिवल और ये फेस्टिवल इकट्ठे कर सकते हैं ना तो उस तरह हम इस पेज पे भी इकट्ठे आ सकते हैं। अभी आपको जैसे मालूम होगा कि हम इस मंथ जो है अल्लाह ताला हम लोगों को ये मंथ 12 नबी का है और हमारे नबी की सांगा है, हमारे नबी की कहते हैं ईद और रोजों के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ा मंथ है ये। तो इस तरह के मंथ के अंदर हमें इन प्रोग्राम में भी फिर चीजें बतानी चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर इस तरह का कल्चर है। तो ये चीजें भी बड़ी जरूरी हैं कि हम अपने कल्चर को बताएं और हम अपने इवेंट को बताएं। हमारे मैंगो फेस्टिवल्स ऑलमोस्ट बहुत अच्छे हुए हैं, और मैंगो फेस्टिवल के अंदर जैसे आपको पता है ये जो माशाल्लाह अम्बेसी का प्रोग्राम हुआ है उसके अंदर जैसे आपको पता है आप भी उधर थे, मैं नहीं था मगर मुझे पता है कि डेनमार्क की जो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी आई है, उसने भी कल्चर देखा है और जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रही है वो भी हमें पता है, थोड़ी बहुत उसने उर्दू भी सीखी है हमें पहले पहले। तो इस तरह से होता है कि हम अपने कल्चर को स्प्रेड करें और हम अपने कल्चर को बताएं कि हम कुछ लोग हैं जो कल्चर को हास्टल कर लेते हैं मगर वो सेम चीज़ है, वो यहाँ पे भी है, इनके कल्चर में भी वो सेम प्रॉब्लम्स हैं मगर मसला ये है कि बस उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत होती है।
0: अदनान अक्सर बात होती रहती है कि जब आपसी रिकॉर्ड भी बात की जाए या बंद कमरों में गपशप की शक्ल में बात की जाए दोस्तों के साथ, तो सियासतदान भी ये कहते हैं, हमारे सियासतदान जो हैं कानून के हो गए पार्लियामेंट के साबका या मौजूदा, तो जब बात एंड पे जाती है तो उनसे सवाल किया जाए तो फिर ये जो कानून में सख्तियाँ आई हैं, आप तो बड़ी सहूलियात बताते थे, 70 में ये था, 71 में ये था, 81 में ये था, उस वक्त ये सहूलियात थी, ये सहूलियात थी, तो उन्होंने कहा फिर इन सारे जो कानून सख्त हुए इनका जिम्मेदार कौन है? तो हमने सर्वे भी कराया था, याद है आपको, तो हर बंदा कहता है ये हमारा कसूर है। जब हमारा कसूर है तो फिर हम सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते?
1: इस पे मैं वही कहता हूँ कि इंसान को अपनी गलतियों को सीखना चाहिए और गलतियों को उम्मीद करना चाहिए। कुछ गलतियां बंदे ऐसे कर देते हैं कि जो आपके सामने होती है उनको बंदा एडमिट करके रेकोनाइज करके आगे चला जाए और कंप्रोमाइज कर ले तो वो फायदा होता है। आप उन उन चीजों पे आप कि आप इस आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं या आपके पीछे इस एजेंडा से पड़े हुए हैं तो फिर वो बात कभी खत्म नहीं होती। आपको बात को खत्म करके आगे चले जाना चाहिए, कहना चाहिए मुझसे गलती हो गई है, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जब आप इस तरह की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो मामला होगा वो ठंडा भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा।
0: अदनान आखिर में कोई आप मैसेज या कोई पैगाम देना चाहें कोई नौजवान बच्चों को, अब स्कूल खुले हैं, कॉलेज शुरू हो गए हैं, स्कूल भी नई क्लासें बच्चों को मिल गई हैं, ये सारा काम तो सिस्टम में चल रहा है, चांद सूरज ग्रहण भी हुआ तो ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और अब तो बच्चों ने बाकायदा जो है अपनी तालीम को जो है जारी व सारी शुरू कर दी है।
1: मैं यही कहूँगा बच्चों को कि अपनी तालीम पे गौर दें, अपनी एजुकेशन पर गौर दें और जो आपको बेहतर लगे वो करें। आपका फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी है, आपने खुद डिसाइड करने का आपको फ्यूचर कैसा है। मैंने भी अपनी बेटी को यही कहा है ग्रेजुएशन में शुरू हुई है तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जो तुम करना चाहोगी हम उसमें सपोर्ट करें।
0: अज़ान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर
1: किया।
0: سامعین ناظرین یہ تھے عدنان امین علی جو کہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ سامعین ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری ہے، کوئی رائے دینا چاہتا ہے، اپنی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادھر آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

में और दूर दराज के इलाकों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। अब आप टूटी फूटी बात तो नहीं करते और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लोगों को समझ आती है। और इंशाअल्लाह ताला हम इस रेडियो को बीबीसी रेडियो की तरह पूरी दुनिया में, कोने कोने में, गांव गांव में, करिया करिया में, ये लोग जंगलों में भी इसकी आवाज सुनेंगे वाईफाई के जरिए। बड़ी अच्छी आपने तमहीद बांधी। पहले तो ये है कि जी मैंगो फेस्टिवल इस दफा और यौम आजादी जिस जोश व खरोश के साथ, जिस तरह लोगों की नौजवान नस्लों ने, हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने शिरकत की है, मैं समझता हूं कि यह शाह जंगीर का एक मेला लगता था ना, तो उस मेले की तरह जिधर भी नजर दौड़ाते थे तो जनाब यौम आजादी, यौम आजादी।

0: वहां पर दूरबीनें लग गई हैं। अगर दुश्मन अपनी कार्रवाई करके आपके माथे पर आपके गले में हाथ डालकर आपका प्रोपेगंडा करके आपको बदनाम करता था ना, तो अब ये पोल खुल गया है। अब उनको पता लग गया है कि अब हमारी ये हमारा सिक्का, ये हमारा झूठापन या पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई करके बदनाम करने का सिलसिला रुक चुका है। तीनों ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी ताकतों से आ गई है, तजारत होगी, दिफा होगा, टूरिस्ट आएंगे। आप यकीन जाने कि यूरोपीय यूनियन से ज्यादा तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा डॉलर और ज़र मुबादला उन लोगों से कमाता, फिनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, पेरिस, इटली, स्पेन से। मैं इस्तांबुल में बाजार में बैठकर खाना खाया, मैंने लोगों को देखा ये लोग जाकर वहां पर कितना सरमाया खर्च करते। अब तीनों मुल्क जो हैं ये टूरिस्ट के जरिए अपनी मईशत को इतना इतना मजबूत करेंगे कि इनके खजाने सोने से भर जाएंगे। राजा साहब, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना छोड़ देंगे, एक बात तो ये है। और दूसरी जनाब, ये जो फेस्टिवल और यौम आजादी मनाया गया, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे थे आपके फोन से पहले कि यहाँ नसीम अहमद भी आए थे, सफीर राउफ खान भी, एतजाज हसन भी, मसरूर जुनेजो भी, फौजिया शहबाज भी, सैयद जुल्फकार गर्देजी भी, अहमद मुश्ताक साहब भी, और अब शोएब सरवर साहब हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की जो मुस्लिम लीग नून ने वेल्बी में मुनक्कद की थी 14 अगस्त को। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, सफीर पाकिस्तान डेनमार्क इज्जत मुआब शोएब सरवर साहब ने, कि आपका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो, जमात सलामी से हो, वली खान से हो, मौलाना फजल रहमान से हो, नून से हो, काफ से हो, पीपल पार्टी से हो, किसी से भी हो, आपकी सोच, आपकी मोहब्बत मैंने शिरकत करके ये महसूस की है। अम्बेसडर साहब के अल्फाज थे, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था और उनके साथी भी बैठे थे, कि मैंने एक ही चमक देखी है, एक ही जोश देखा है, एक ही जज्बा देखा है कि आप सब लोग किसी भी सियासी पार्टी में हो, सब पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मैं राजपूत आसिफ साहब को माइक देता हूं।
1: अजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपने शाहजी साहब की बात सुनी और आप क्या कहेंगे?
0: आसिफ साहब चले गए?
1: नहीं, हमारे साथ हैं। आसिफ, आवाज आ रही है?
2: जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। आसिफ, आपने आजी साहब की बात सुनी?
2: जी बिल्कुल, बात सुनी है।
1: अब उन्होंने माइक आपकी तरफ कर दिया है।
2: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने आज हमें मुद्दू किया और जो फंक्शन हुए हैं इधर मुख्तलिफ, उनके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, ये आपको शील्ड नहीं मिली, ये पूरे मीडिया को मिली है। मीडिया का अतराफ किया गया है यहाँ पे बैसी की तरफ से, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह जैसे हमारा किरदार है मीडिया का यहाँ डेनमार्क में, आइंदा भी हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। क्योंकि शोएब साहब यहाँ पे, उन्होंने जिस तरह बताया कि इनका ये आखिरी साल है, तो उन्होंने जिस तरह मीडिया के साथ और कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारा है, ये एक मिसाली है। इससे पहले भी आते रहे हैं, ये नहीं है कि हम कहेंगे कि उनकी कोई हम गलत बात करेंगे। इससे पहले भी सफीर पाकिस्तान आते रहे हैं, वो भी उनका भी तल्लक अच्छा रहा है, लेकिन उन्हें इन्होंने ज्यादा क्लोज होके मौजूदा जो हमारे सफीर पाकिस्तान जनाब शोएब सरवर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मैं लोग इनकी तारीफ करेंगे, इनका याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं सफीर हर साल, जहरी बात है उनका 3 साल बाद चेंजिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं। जिस तरह अभी असलम एर साहब ने नाम लिए मुख्तलिफ, कुछ ऐसे हैं जो इतना वो नहीं गुल मिल सकते, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। उनमें से मेरा, मैं समझता हूँ शोएब सरवर साहब भी हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए। इनके ज्यादा हमें जब इंशाल्लाह जाएंगे हम कोई ना कोई पार्टी

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आप सबको पहले से मालूम है कि सफारत खाना ने पहले इतला कर दी थी कि 14 अगस्त को वो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं हमेशा की तरह। इस दफ़ा भी वो 14 अगस्त को अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सामने नाज़रीन, चूँकि हम पब्लिक के आदमी हैं, आवाम के आदमी हैं, तो हम चाहते हैं कि लाइव मालूमात आपको मिले, आपको दावतें, ये दावतें आम होती है। तो इस वक्त अवामी सफ़ीरे पाकिस्तान जनाब मोहतरम शुएब सरवर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। शुएब साहब, एक बार फिर खुश आमदीद।
2: जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, आपको और तमाम कम्युनिटी मेंबरान को जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं।
1: शुएब साहब, आपने बड़ा बिजी ये साल गुजारा, ये जो साल नया 2026 का है, इसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे। पहले कुराने में तो आपको वो टाइम नहीं मिला था, आपने सारी मसरूफियात की जो है वो कसर निकाल दी। मैंगो फेस्टिवल्स हुए, इस दफ़ा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आम जो है वो बिका डेनमार्क की हिस्ट्री में, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए इन्फॉर्मेशन के हवाले से, आपकी मुलाकातें भी हुई। आप 14 अगस्त को प्रोग्राम हमेशा की तरह आ रहा है, तो 14 अगस्त के हवाले से अपनी कम्यूनिटी को क्या मैसेज देंगे?
2: जी, ये हर साल की तरह जी हम इंशाल्लाह इस दफा भी 14 अगस्त की जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है और वो 10:30 बजे जी एम्बेसी में है, और तमाम पाकिस्तानियों को जी इनविटेशन है कि वो अपनी फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ आएं और इस प्रोग्राम में जी शिरकत करें। और इंशाल्लाह इस दफा पिछली दफा की तरह आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लार्ज नंबर्स में पाकिस्तानी आएंगे। और ये साल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, एक उसमें खसूसियत है कि ये कायदे आजम के की 150वीं सालगिरह है पाकिस्तान, उनकी पैदाइश की। तो ये हमारे लिए जो 2026 है का जो जश्न आज़ादी है वो एक डबल एक खुशी का एक मौका है। और ये इस वक्त हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं जब आपको पता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफें हो रही हैं, और जो पाकिस्तान जो एक रोल अदा कर रहा है दुनिया में बैनल कौमी अमन के लिए, जिसमें हमारे वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, और उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बहुत बुलंद है मुख्तलिफ अकवाम में, और दुनिया हमारे इस रोल को।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 16/8/2026 का प्रोग्राम है। 3 बजा चाहते हैं, जिस तरह हमने सुबह अपने इंट्रो में ऐलान किया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। 14 अगस्त के हवाले से यहाँ तकरीबन 9-10 प्रोग्राम हुए, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा, फिर कोई उससे बड़ा, फिर कोई उससे बड़ा, फिर कोई बहुत बड़ा, और उसके बाद ख़त्म हो गए। अब ना ही मैंगो फेस्टिवल होगा, ना ही 14 अगस्त के हवाले से कोई प्रोग्राम है जो हमारे शेड्यूल में है, या मैंने किसी ने रब्ता किया हो कि कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो इस वक्त तो जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी के जो हैं वो राजा फराद कोकन साहब, सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहब, चौधरी साजिद साहब जो हैं, राजा फराद जो हैं पाकिस्तान सोसाइटी का आज मैंडेट लेकर जो हैं वो बात करेंगे। इनके साथ अब इनके साथी हैं, तो मैं शाह साहब को भी, साजिद को भी और राजा फराद साहब तीनों को खुश आमदीद कहता हूँ। वालेकुम सलाम राय साहब, मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था आप 14 अगस्त के हवाले से, तो आप 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान अम्बेसी में प्रोग्राम हुआ, बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ, शानदार प्रोग्राम हुआ, आप क्या कहेंगे?
3: उस पे बिल्कुल आप और आपकी सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है।
1: बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने ذکر کیا اور آپ نے ہمیں مبارکباد دی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو انہوں نے ریکگنائز کیا کمیونٹی فورم کو اور ہمارے اس کام کو 25 دسمبر کے حوالے سے قائد اعظم کے جو پروگرام کراتے ہیں، یہ سب آپ کو مبارک ہے، آپ سب لوگ ان چیزوں میں ساتھی سارے ہمارے شامل ہوتے ہیں، اس پورے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، تو اس یہ مبارک تو سب کو جاتی ہے جی۔ رہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ سامعین ناظرین ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ ہمارا بحال ہو جائے۔ رائے صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی، آواز ہمیں باہر نہیں جاتی، ہمیں آتی نہیں ہے۔
3: اچھا دوبارہ پھر ملائیں
4: کی؟ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मुसलमान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मुसलमान, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुसलमान इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मौजूद सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामईन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए, मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। माज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है? ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई? ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई,

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान्य नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम इस वक्त हमारे बुजुर्ग साफी जनाब मोहतरम हाजी असलम मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइव प्रोग्राम में। हाजी साहब आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम आज पेश किया, आपकी बातों को लोगों ने बड़ा सराहा किया। हाजी साहब बड़ी मेहनत से जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और 14 अगस्त के हवाले से बड़े खूबसूरत अल्फाज में अपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं सबकी तारीफ की है। जितने जितने 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम हुए हाजी साहब आपने तारीफ़ की है, तो हाजी साहब आपने फरहाद की तारीफ नहीं की। आज फरहाद के पास पाकिस्तान सोसाइटी का मैंडेट था।
2: देखें जी, आज बहुत सारी बातें हुई हैं और 14 अगस्त यौम आज़ादी के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ रहे हैं, हम भी आप भी रहे हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर यौम आज़ादी बड़ी शान शौकत से बड़े पुरवकार तरीके से जोश और जज्बे के साथ मनाया गया, और इसी तरह पूरे जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान सोसाइटी ने बहुत बड़े हाल में, जहाँ कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं थी, हमें दावत तो मिली थी मियां मुनीर साहब, वलायत साहब और राजा फरहाद साहब की तरफ से भी, लेकिन 10 दिन पहले आसफ साहिल राजपूत साहब ने हमें पाबंद किया था और दावत दे दी थी। इनकी दावत एक दिन पहले मिली यानी 13 अगस्त को, और तकरीब जो है वो 14 अगस्त को थी, तो उन्होंने 10 दिन पहले दी थी मुझे दावत, तो मैं उनका पाबंद था तो इसलिए मैं वहाँ नहीं पहुँच सका, वरना मैं ज़रूर उसे वहाँ भी जाता, क्योंकि ये आज़ादी है। बानी पाकिस्तान ने जितनी मेहनत तगदो दिन रात सुबह शाम दो ताकतों के साथ डायलॉग करके यौम आज़ादी लेकर दी, हम तो जिंदगी भर हमारी

0: 28 टेम्परेचर है, आपने टेबल के ऊपर कोई पानी वगैरह बोतलें वगैरह कोई जग नहीं रखा। कहता वो मेरा स्टाफ खड़ा है, उनको जाके पूछो मुझे क्यों कहते हो। ये मुश्ताक महर के लफ्ज़ असल में सुने हुए हैं और सच्ची बात कर रहा हूं मैं। वो फैमिली और बच्चा आज भी दिखा सकता हूँ। इन्होंने इन्हें अवामी सफीर अम्बेसडर का खिताब इसलिए दिया गया है कि इन्होंने अपने स्टाफ के साथ खुद बहुत मेहनत की है, काम किया है। जैसे सिकंदर ने कहा था, राजपूत ने जब 14 अगस्त मनाया वेल्बी में 14 अगस्त के दिन, कि कुछ बातें जो हैं सरकारी होती हैं वो पब्लिक में करी नहीं जाती। ये बहुत काम किया है इन्होंने। ये रहें जाएं, राजपूत ने कहा है कि हम खत लिखेंगे कि 2 साल का टेनोर और दे दिया जाए। ये काम करने वाले आदमी हैं, ये सोल्जर सिपाही और ऑफिसर हैं। मैंने इनको ये खिताब दिया है। ये अपने बाई ग्रेड के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और बहुत काम करने वाले, लेकिन सोल्जर मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग कतार में सलाम लेने के लिए, तस्वीरें बनवाने के लिए, मेरे पास 150 फोटो हैं, एक एक आदमी की मैंने 10-10 तस्वीरें उतारी हैं। यार वो जफियां पा रहे हैं, साथ मिलके खड़े हो रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट तो अपने साथ गुनाह समझते हैं अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जाए। वो मुंडे से मुंडा लगा कर खड़े, मेरी तस्वीर देख लो कैसे खड़े हैं मेरे साथ, आपकी देख लो, आपके बच्चे की देख लो। इसलिए इनको
1: वो तस्वीर बड़ी हाईलाइट हुई है।
0: ये अवामी है, ये अवामी सफीर है,
1: ये तो आजी साहब आप भी तो अवामी थे ना, जोड़ा बन गया अवामी।
0: ये वफादार है वतन की खातर। उन्होंने जो मिसाल दी, अब मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। वाघा बॉर्डर पर वहां जब तकरीब होती है तो उस बाबे का, बुजुर्ग का, बूढ़े का, जिनकी 84 पता नहीं उम्र है, 90 साल है, उन्होंने अपनी तकरीर में वहां सैकड़ों आदमी थे, मैं हजारों तो नहीं कहता लेकिन सैकड़ों थे, कुर्सियां भरी हुई थी, खवातीन और बच्चे उधर कुर्सियों में भरे हुए थे, लोग फुटपाथ पे खड़े थे, बिल्डिंग के पास खड़े थे, कार पार्किंग की जगह पे खड़े थे। उन्होंने जो मिसाल दी कि उस बुजुर्ग का सारा खानदान जंगे आजादी में शहीद हुआ है, लुबना के 32 अफराद पता नहीं कितने शहीद हुए हैं, एडी बट के 2 हकीकी भाई शहीद हुए हैं, उन्हें ये पता है, वो उस जज्बे को जानते हैं। इसलिए अवामी सफीर उन्हें कहना, मैं समझता हूँ यह लफ्ज उनकी शान के मुताबिक छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। यहाँ सबको एक लेटर लिखना चाहिए कि हमें आज तक ऐसा सफीर नहीं मिला कि जो छोटे से लेकर बुजुर्ग तक मुसाफा करता है तस्वीर बनाने के लिए। लोग आते हैं, वो नहीं जाते, हम पकड़ कर लाते हैं, प्लीज हमारी एक फोटो बना दें, क्योंकि आपके मुतलक दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली है। हम तो इंसान हैं, आप भी मैं भी इंसान हूँ, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है, तो लिहाजा वो खुशी खुशी तस्वीरें बनाते हुए भी बाद औकात यकीन जानो कि लोग कैमरा लेकर भाग रहे थे उनकी तरह,
1: कोई शक नहीं।
0: और कितना अच्छा बच्चों ने मिली नगमा गाया,
1: ऐसा पहली दफा हुआ बच्चों ने मिली नगमे गाए, और जो 3 बच्चियों ने मिलकर पढ़,
0: देखो बच्चों के लिबास देखो,
1: लिबास
0: वो जो वहां पर डैनिश अम्बेसडर सोफे पर अपने खावंद के साथ बैठी हुई थी, उसने बड़ी तवज्जो से बात सुनी है, उनको समझ आई या नहीं आई। और जाते हुए राजा साहब, ये देखें मुल्कों की तरक्की ऐसे अम्बेसडरों से होती है जो इस वक्त मौजूद हैं।
1: ठीक
0: है, डैनिश अम्बेसडर जो इस्लामाबाद में है अपने हस्बैंड के साथ, मैं और जफर गुलोकार बाहर खड़े थे, दोनों ने साइकिल निकाली और साइकिल पर अपने घर गए हैं।
1: आई साहब आपका बहुत शुक्रिया, सारा दिन आप मसरूफ रहे।
0: अफराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके पास फुल मंडेट था और उन्होंने मंडेट का हक भी अदा किया है। और एक बात राजा साहब मैं ये जरूर कहूंगा कि हम पहले इतना साफ उर्दू में बात नहीं करते थे, राजा फराज साहब मुझसे अच्छी उर्दू बोलते हैं।
1: माशाल्लाह, मुबारक जी, मुबारक, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है, और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किए हैं, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वजीर आज़म साहब ने की, एक और ज्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के खिलाफ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने आयरलैंड में फिल्म बनाई थी और जिस्म पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के खिलाफ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन आराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुसलमान मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीजें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया कियास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया कियास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। پیا کیاسکو کو بتا دے ڈنمارک نے جو ترقی کی ہے وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کی ہے بلکہ انہی انواندرا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائند

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।